0: संत के दुख नार जा कटे,
1: संत के दुखन जमते नहीं छूटे,
0: संत के दुखन सुख सब जाए,
1: संत के दुखन नरक में पाए,
0: संत के दुखन मत होए मलीन,
1: संत के दुखन सो बाते हीन,
0: संत के अते को रखे न कोए,
1: संत के दुखन थान प्रस होए,
0: संत कृपाल कृपा जे करे,
1: नानक संत संग निंदक भी करे,
0: संत के दुखन ते मुख पवे,
1: संतन के दुखन काग जो लवे,
0: संतन के दुखन सर्प जोन पाए,
1: संत के दुखन त्रिल जोन कर माए,
0: संतन के दुखन त्रिल

0: कष्टकारी।
1: जब करे कृष्ण दृष्टिता
0: पापुण तब कैसे होता,
1: जब तारी आपन सुन समाद
0: तब वैर विरोध के संग कमाद,
1: जब इसका वर्ण चेन न जापत
0: तब हर शोक को किसे भी आपत।

0: चतर गोविंद खुशभूषत लेखा
1: रघुनाथ निरंजन गोचर गदे
0: कौन कौन छुटे कौन बंधन बाधे
1: अपने आप ही चर्जा
0: नानक अपन रूप आप ही ऊपर जा।

तेरे भगत सलाहन तुद जी हर अनक अनेक अनंता तेरी अनक करे हर पूजा जी तप तप जपे बेअंता तेरे अनेक पढ़े बहु सिमरत शास्त्र जी कर किरिया खट कर्म करंता से भगत भले जन नानक जी जो पावे मेरे हर भगवंता।

महादेव को कहत सदाशिव निरंकार का चीनत न पिव आप अपनी बुद्ध है जेती वर्णत भिन्न भिन्न तुए तेती तुमरा लखाना जाहे पसारा एह विद सजा प्रथम संसारा एकै रूप अनूप सुरूपा रंक पयो राव कही भूपा अंडज जेरज से तज कीनी उत्पुज खान बहुल रच दीनी कहूं फूल राजा हव बैठा कहूं सिमट पयो संक्र इकठा सगरी सृष्टि दिखाए अचंभव आद जुगाद स्वरूप स्वयंभव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार सिख संगरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सगल मलेश करो अरणकाता जे अस तो जिताव शरणी परे तिनके दुष्ट दुखित हवा मरे पुरख जमन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो काल को एक बार त्याय है ताके काल निकट नह ऐह रक्षा हुए ताहे सब कल्ला दुष्ट अरिष्ट टरे तत्कल्ला कृपा दृष्टन जाहे ने हर हव ताके ताप तनक मैं हर हो रिद सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट छा शब सके न कोई एक बार जन तुम्हें संभारा काल फास्ते ताहे उबारा जिन नर नाम तिहारों कहा दार्द दुष्ट दोख ते रहा खड़ग केत मैं शरण तिहारी आप हाथ दे ले उबारी सर्व ठावर मोह सहाई दुष्ट दोख ते ले हो बचाई कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूरण सुबराता किलबिक सकल देह को हरता दुष्ट दुखियन को शाय करता श्री सुज पहे दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तकला मन बांचत फल पावे सोई दुखना तसे व्यापत कोई अड़िल सुने गुंग यो यहे सो रस न पावई सुने मूड चित लाए

चौपाई संबत सत्रह सहस प्रणित जाय अर्ध सहसपुन तीन कह जाय भाद्रव सुधी अष्टमी रब बारह तीर सद्रव ग्रंथ सुधारा इत श्री चरित्रो पाखे आने त्रया चरित्रे मंत्री भूप संवादे

अपना जान मुझे प्रत प्रिया, चुन चुन शत्रु हमारे मरिया, देख तेग जग में दऊ चल, राखा मह और ना दल, तुम मम करो सदा प्रतपार, तुम साहिब मैं दास तिहार, जान अपना मुझे निवाज, आप करो हमरे सब काज, तुम हो सब राजन के राजा, आपे आप गरीब निवाजा, दास जान कर कृपा करो मोहे, हार परामयान द्वार तोहे, अपना जान करो प्रतपारा, तुम साहिब मैं किंकर थारा, दास जान दे हाथ उबारो, हमरे सब ऐरियन संगारो, प्रथम तरो भगवत को ध्याना, बहर करो कविता बिदनाना, किशन जथा मत चरित्र उचारो, चूको कबले हो सुधारो कबिबाज दोहरा, जो निज ब्रह्मो सो कहा, सो कहे हो जग माहे, जो ते प्रभु को त्याय है अंत

एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाये वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याए। फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास हुई सहाये। अर्जन हर गोबिंद नाम सिमरऊ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई है जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिया करना उन्हें दया वैताए। सब थाई हुए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी। सब थाई हुए सहाय दसा पातशाहियां दी जोत साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान दरगे बोलो जी। पंजा प्यारियां चौं साहिबजादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिना नाम जपिया बन छकिया। देख चलाई तेग वाही देख अंड कीता दरा प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान दरगे बोलो जी। जिला सिंह सिंगणिया ने तरमे सीस दिते बंद बंद कटवाए खुपरिया लवाइया चरखड़िया ते चढ़े आरिया नाल चराए गए गुरद्वारिया की सेवा लई कुरबानियां कीतियां धर्म निहारिया। सिखी के सांसवासा संघ निभाई तिना की कमाई का ध्यान तरके बोलो जी। पंजा तख्तां सरबत गुरद्वारिया का ध्यान तरके बोलो जी। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। चेते आवे चेतावन का सदका

इतनी सेवा प्रवान करने जी कितने करदा पर जादी माफी बख्शन पाए सब अगत सिंह जी आप जिन पत्र बाणी कथा राही जोड़न दी उन्हां पास इतिहास का सरण करो जी अज तो द्वांत विश्राम तो भाई साहब भाई पिंद्रपाल सिंह शुक्रवार तक कथा लई हाजरी पा रहे अठ तो नौ समा होएगा सारे दवाना चो अज पर कड़ा प्राप्त करने जी हम कथा राही जुड़ना करो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

परम सम्मान योग चुकु चुक अटल चावर शतर तख्त दे मालक धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाईमान गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जीओ अते मीडिया राही गुरु चरणा नाल जुड़ बैठी साध संगत जीओ आप सारे वड़भागी हो तंता दे योग हो जो सतगुरां दी पावन बाणी अमृतमई बाणी सरवण करके आत्मक आनंद माण रहे हो अपना ये मनुखा जन्म सफला कर रहे हो। आओ शाम दे दीवाना विच जो लड़ीवार विचार चल रही है वह विचार आपा सांझी कर सकीए।

फल उपकारी जीवंत पंखी चले दिशावरी बिरखा सुफल फलंत। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

0: सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी आप जी दी अमृत बाणी दे अर्थ करदिआं कथा विचार करदिआं होईआं बेअंत फुल्लां साध संगत जी बख्श देणीआं। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतह।
1: वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन्नवाद इहां साढ़े पंथ के महान कथावाचक भाई पिंदरपाल सिंह जी जिन्हों का अज इत्थे पहला दवान सी, चार दवान होर बाकी हैं। सो सारिया संगतां नूं निम्रता सहित बेनती है कि आप अपने परिवारां समेत चार दवानां की हाजरी जरूर भरो, वध तो वध गुरबाणी का फायदा उठाओ। बहुत धन्नवादी हाँ। आओ इस तो उपरंत आनंद साहब सरवण होगा तो दवान की समाप्ति होगी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।
2: सतनाम श्री वाहिगुरु साहब जी। रामकली महला तीजा आनंद एक ओहकार सतगुर प्रसाद। आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर तां पाया सहज सेती मन वजिया वाधाइया राग रतन परवार परिया सबद गावड़े आईया सबदो तां गावहो हरी केरा मन जिनी वसाया कह नानक आनंद होवा सतगुरु मैं पाया। ए मन मेरे आ तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार ओह करे तेरा कारज सब सवारना सब नागलां समरथ स्वामी सो क्यों मनहु विसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहेबा क्या नाही घर तेरा घर ता तेरा सब किछ है जिस देह सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिन कह मन वसिया वाजे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही घर तेरा साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर सांत सुख मनियाए वसिया जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु विठहो जिस दिया एह वडियाइया कह नानक सुनहो संतहो शब्द धरहो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द तित घर सुभागै घर सुभागै शब्द वाजे कला जित कर धारिया पंच दूत तुद वस कीते काल कंट कुमारिया तुर कर्म पाया तुद जिन कहो से नाम हर कै लागे कह नानक तै सुख होआ तित कर अनहद वाजे अनद सुनो बडभागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन पै सरसे पूरे गुरते जानी सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया भर पूरे बिनवंत नानक गुरचरण लागे वाजे अनहद तूरे सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया भर पूरे बिनवंत नानक गुरचरण लागे वाजे अनहद तूरे श्लोक पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत दिवस रात दोय दाई दाया खेलै सगल जगत चंगे आईया बुरे आईया वाचै धर्म हदूर करमी आपो आपणी के नेड़ै के दूर जिन्नी नाम त्याया गे मसक्कत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल जिन्नी नाम त्याया गे मसक्कत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

वाहेगुरू वाहेगुरू वाहेगुरू वाहेगुरू वाहेगुरू वाहेगुरू वाहेगुरू वाहेगुरू वाहेगुरू वाहेगुरू वाहेगुरू वाहेगुरू

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

दिन जागे प्रभु कै सिमरन भव ना व्यापै प्रभु कै सिमरन दुख ना संतापै प्रभु का सिमरन साध कै संग सर्वदान नानक हर रंग प्रभु कै सिमरन रिद्ध सिद्ध नव निध प्रभु कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध प्रभु कै सिमरन जप तप पूजा प्रभु कै सिमरन बिनसै दूजा प्रभु कै सिमरन तीर्थे स्नानी प्रभु कै सिमरन दरगह मानी प्रभु कै सिमरन होए सुपला प्रभु कै सिमरन सुफल फला से सिम

जाए। प्रभ कह सिमरन सब कह सुजै। प्रभ कह सिमरन नाही जमत रासा। प्रभ कह सिमरन पूर्ण आसा। प्रभ कह सिमरन मन की मल जाए। अमृत नाम रिद माह समाये। प्रभ जी बस साध के जसना नानक जन का दासन दसना। प्रभ कौ सिमर से तनवंते। प्रभ कौ सिमर से पतवंते। प्रभ कौ सिमर से जन प्रवान। प्रभ कौ सिमर से पुरख प्रधान। प्रभ कौ सिमर से बेमोहताजे। प्रभ कौ सिमर से सर्व के राजे। प्रभ कौ सिमर से सुखवासी। प्रभ कौ सिमर सदा विनाशी। सिमरन ते लागे जन आप दयाला। नानक जन की मंगैर वाला। प्रभ कौ सिमर से परोपकारी। प्रभ कौ सिमर तन सत बलिहारी। प्रभ कौ सिमर से मुख सुहावे। प्रभ कौ सिमर तन सुख बिहावे। प्रभ कौ सिमर तन आत्म जीता। प्रभ कौ सिमर तन निर्मल रीता। प्रभ कौ सिमर तन अंध कनेरे। प्रभ कौ सिमर बसे हरनेरे। संत कृपा ते अंदर जाग। नानक सिमरन पूरै भाग। प्रभ कै सिमरन कार्ज पूरे। प्रभ कै सिमरन कभ न झूरे। प्रभ कै सिमरन हर गुणवानी। प्रभ कै सिमरन सह समानी। प्रभ कै सिमरन निचल आसन। प्रभ कै सिमरन कमल बिंगासन। प्रभ कै सिमरन अनहद चुनकार। सुख प्रभ सिमरन का अंत न पार। सिमरह से जन जन कौ प्रभ मया। नानक तिन जन सरणी पया। हर सिमरन कर भगत प्रगटाए। हर सिमरन लांग बेद उपाए। हर सिमरन पै सिद्ध जति दाते। हर सिमरन नीत चहु कुंट जाते। हर सिमरन धारी सब धरना। सिमर सिमर हर कारण करना। हर सिमरन कियो सगल कारा। हर सिमरन मह आप निरंकारा। कर कृपा जसा बुझाया। नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया। श्लोक दीन दर दुख भंजना। घट घट नाथ अनाथ शरण तुम्हारी आयो। नानक प्रभ साथ अष्टपदी। जहमात पिता सुतमीत ना पाई। मन ऊहा नाम तेरा संग सहाई।

खिन माहे उधारी अनक पुनः चरण करत नहीं तरै हर को नाम कोट पाव पर हरे गुरमुख नाम जपो मन मेरे नानक पाव सुख नेरे सगल सृष्ट को राजा दुखिया हर का नाम जपत होए सुखिया लाह करोरी बंधन परे हर का नाम जपत निस्तरै अनक माया रंग तेख ना बुझावे हर का नाम जपत आगावे जिह मार्ग एह जाते अकेला तह हर नाम संग हो तु सुहेला ऐसा नाम मन सदा त्याई है नान गुरमुख परम गत पाई है छूटत नहीं कोट लाख बाही नाम जपत तह पार पराही अनक बिघन जह आय सिंगारे हर का नाम तत्काले उधारे अनक जोन जन्म मर जाम नाम जपत पावे विश्राम

मिथ्या तन धन कुटुंब सुवाया मिथ्या होमय ममता माया मिथ्या राज जोबन तल माल मिथ्या काम क्रोध विकराल मिथ्या रथ ती अस बहतरा मिथ्या रंग संग माया पेखस्ता मिथ्या त्रोह मोह अभिमान मिथ्या शिव प्रकृत गुमान अस्त्र भगत साधकी शरण नानक जाप जाप जी वे हर के चरण मिथ्या श्रवण पर निंदा सुन है मिथ्या हस्त पर द्रिव कौ हिर है मिथ्या नेत्र पेखत पर त्रय उपाद मिथ्या रसना भोजन अन सुहाद मिथ्या चरण पर विकार कोतावे मिथ्या मान पर लोभ लुभावे मिथ्या तन नहीं पर पकारा मिथ्या बाह नेत विकारा बिन बूझे मिथ्या सब पै सफल

राष्ट्रपति तेह प्रसाद शतीह अमृत खाहे तिस ठाकर कवराख मन माहे जिह प्रसाद सुगंधत तन लावे तिस कव सिमरत परम गत पावे जिह प्रसाद बसे सुख मंदर तिसे त्याय सदा मणे अंदर जिह प्रसाद गृह संग सुख बस नाड पैर सिमरो तिस रसना जिह प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याई है त्यावन जोग जिह प्रसाद पाड़ पटंबर हंडावे तिसे त्या कदबर लुभावे जिह प्रसाद सुख से सोई जय मन आठ पैर ताका जा सिंह भी जय

आप करे ब्रह्म ज्ञानी सकल किरी नातम रस ब्रह्म ज्ञानी चीना ब्रह्म ज्ञानी की सब उपर माया ब्रह्म ज्ञानी ते कस ब्रान पहा ब्रह्म ज्ञानी सदा सुंदर सिंह ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि अमृत बरसी ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान

तैसा अमृत तैसी बेखाटी तैसा मान तैसा विमान तैसा रंग तैसा रजान जो वृताय साई जुगत नानक ओह पुरख कही है जीवन मुक्त पार ब्रह्म के सगले ठाओ जे जिद कर राखे तैसा तिल नाओ आपे करण करावन जोग प्रभ भाव सोई फन होग पसरियो आप होय अंत तरंग लखे।

अनुकृतन प्रावृति बहुभेद अनुप्रकार कैकोट होय पुजारी कैकोट आचार व्यवहारी कैकोट पैतीर्थवासी कैकोट बन ब्रह्मदासी कई कोट वेद के स्रोते कई कोट तपीसर होते है कई कोट आत्म ध्यान धारे कई कोट कव का विचारे कई कोट नवतन नाम त्याव नान

आप अलिपत रहया परपूर कई कोट पाताल के वासी कई कोट नरक स्वर्ग निवासी कई कोट जन्म जीवे मरह कई कोट बजोनी फिर है

नानन गर्व गले अस्पति जिस कै अंतर राज महान सो नरक पाती होवत सुआन जो जाने में जो बनवंत सोवत बिष्टा का जंत आस कहो करवंत कहावे जन्म मरे बोजोन प्रभावे धन भूमका जो करे गुमान सो मूर्खन दा ज्ञान

तजो सयान सुरजन सिम राहो हर हर राय एक आस हर मन रखो नानक दूह परम पाओ जाय अष्टपदी मानो की टेक।

ते सुखी एको एक एक पछाने यतो कियो सोजी जाने नाम संग जिस का मन माने नानक तिन निरंजन जाने गुर प्रसाद अपने आप सुजे तिस की जानो त्रिसना बूझे सास

अनेक सात पुरख पूर्ण विवेक काहु बोल न पहु चित प्राणी अगमे अगोचर प्रभ निर्वाणी निराहार निर्वैर सुखदाई ताकी कीमत कने न पाई अनक भगत बंधन नित कर है अनक भगत बंधन नित कर है चरण कमल हृदय सिमरै

नहीं रुलाने। सुबर परे प्रेम रस रंग उपजे चाहो साधक संग, परे सरनान सब त्यागन त्रिपुर गासन दिल लिवलाग। बड़भागी जपया।

कहते हो तब जब तारी अपन संग संभाव तब बैर विरोध के तब बैर विरोध के संग मात जब इसका वर्ण चिन्ह जापत तब हरख सो कहो किसे व्यापत जब अपने आप आप पार ब्रह्म तब मोह कहा किसोत प्रभ में अपन खेल आवर्ती जानान कर रहे हार न दूजा जब होवत प्रभु केवल तनी तब बांध मुक्त कहो किस कहो गणी

आप साथ तारी सब साज होत पोता प्रसंग राज ताकि गत मित कहीं न जाए दूसरे।

असंख नाम असंख थाम अगम अगम असंख लो असंख हैं सिर पार हो अखरी नाम अखरी सारा अखरी ज्ञान गीत गुणगा अखरी लिखण बोलण बाण अखरा सिर संजोग बखाण जिन ए लिखे ते सिर नाहे जि फुरमाहे तिप तिप पाहे जेता कीता तेता नाव बिन नाम है नाही को थाउ कुदरत गमन गहा भी चार बार या ना जावा एक बार जो तो दपावे साई भलीकार तू सदा सलामत निरंकार भरिय हथ पैर तन देहे पानी धोते तो उतर सोखे मूत पलीती कपड़ होए दे साबून लइया ओ धोए भरिय मत पापा कै संग ओ धोपै तो नावा कै रंग पुन्नी पापी आखण नाहे कर कर करना लिख लै जाहो आपे भी जापे ही खाहो नानक हुकमी आब हो जाहो तीर्थ तप दया तत्दान जे को पावे तिलका मान सुनिया बनिया मन कीता भाव अंतरगा तीर्थ मल्लाहो सब गुण तेरे मैं नाही कोए बिन गुण कीते भगत न होए स्वास्थ आद बाणी बरमाओ सत सुहान सदा मन चाओ

गावन जति सती संतोखी गावे वीर करारे गावन पंडित पढ़न रखीसर जुग जुग वेदा नाले गावे मोहनिया मन मोहन सुरगा माश पयाले गावन रतन पाए तेरे अड़सठ तीर्थ नाले गावे जोध महाबल सूरा गावे खाणी चारे गावे खंड मंडल पर भंडा कर कर रखे तारे सही तुदनु गावे जो तुद भावन रते तेरे भगत रसाले और केते गावन से मैं चेतना आवन नानकिया विचारे सोई सोई सदा सच साहेब साचा साची नाई है पीओ सी जाए ना जासी रचना जन रचाई रंगी रंगी भांति कर कर जनसी माया जन उपाई कर कर वेखाए किता आपना जेव तिसदी वडियाई जो तिस भावै सोई करसी हुक्मना करना जाई सो बादशाह शाह पात साहिब नानक रहन रजाई मुंदा संतोख सरंबत झोली।

आदेश तथा आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एकोवेश भुगत ज्ञान दया भंडारन घटघट बाजय नाद आप नाथ नाती सब जाकी रिद सिद्ध अवरासाद संजोग विजोग दुए कार चलावे लेखे आवै भाग आदेश तस आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एकोवेश एका माई जुगत वे आई तिन चिल्ले प्रवाण एक संसारिक भंडारी गलाए दीबाण जिवत सुभावै तवै चलावै जब होवै फुरमान ओह वेखै ओना नदर न आवै बहुता एह विडान आदेश तस आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एकोवेश आसन लोए लोए भंडार जो किश पाया सो एका वार कर कर वेखै सिरजनहार नानक सच्चे की साची कार आदेश तस आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस एक दूजी बाहो लाखो है लाखो वह लख वीस लख लख गेड़ा आखी है एक नाम जगदीश ए त्राह पत पवड़ियां चढ़िया हुए इकीस सुन गल्ला आकाश की कीटा आई रीस नानक नदरी पाई है कूड़ी कूड़ा ठीस।

नाथ केते केते देवी वेश केते देव दानव मुन केते केते रतन समुंद केतिया खाणी केतिया बाणी केते पात नरेंद केतिया सुरती सेवक केते नानक अंत ना अंत ज्ञान खंड मह ज्ञान प्रचंड तिथे नाद विनोद गोड आनंद शर्म खंड की बाणी रूप तिथे घाट तड़िए बहुत अनूप ताकिया गलां कथिया ना जाहे जे को कह पिछे पछताए तिथे घड़िया सुरत मत मन बुद्ध तिथे घड़िया सुरा सिदा की सुध कर्म खंड की बाणी जोर तिथे होर ना कोई होर तिथे जोद महाबल सूर तिन मह राम रहे आ प्रभूर तिथे सीतो सीता महिमा माहे ताके रूप ना कथने जाहे ना ओहे मरहे ना ठागे जाहे जिनके राम वसे मन माहे तिथे भगत वसे के लो करहे आनंद सच्चा मन सोए सच खंड वसे निरंकार कर कर वेखे नदर निहार तिथे खंड मंडल ब्रभंड जे को कथे ता अंत ना अंत तिथे लो अलो आकार जिव जिव हुकम तवै तवकार वेखे विकसै कर विचार नानक कथना करड़ा सार जत पाहारा धीरज सुनियार अहरण मत वेद हथियार पाओ खला अगंत बताओ भांडा पाओ अमृत तित ढाल घड़िया शब्द सच्ची टकसाल जिनकाओ नदर करम तिनकार नानक नदरी नदर निहाल सलोक पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत दिवस

पूर्ण पुरुष अपार सर्व विश्व रचयो स्वयं भवगण पंजनहार कालहीन कला संयुक्त काल पुरुष देश धर्मताम सुपरम रात भूतलाख अपेश अंगरा अंगरा रंग जाके जात बाधना नाम गर्भगंजन दुष्ट भंजन।

चतुर्दश घंता कालपाय ब्रह्मा अवतरा कालपाय शिवजू अवतरा कालपाय कर भीषण प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जमन काल जोगी शिव कियो वेदराज ब्रह्मा जू थियो जमन काल सब लोग सवारा नमस्कार है ताहे हमारा जमन काल सब जगत बनायो देव दैन जशन बजायो आदंत एक अवतारा सोई गुरु समझो हमारा।

सगरी सुस्तिकाय अचंभव आजुगा स्वरूप स्वयं भव वृक्षा मेरी तुम करो सिख उबार आसिख संगरो दुष्ट जते उठवत उदपाता सकल मलेश करो रण कहता जे आशुतो जता विसरणी परे।

तू एक तर साजे कर सिंह डिठो जाओ दाता करताप तू तुस्ते वह करे पसाओ तू जाना सबसे दिल ऐसे जिम कवाओ करा सिंह डिठो जाओ करा सिंह डिठो जाओ।

दिखाज मिले तमस्त कलाइए, कूड़ा लाल छटिए के मन लगते आइए, फालते भी हो पाई अज भी ही कार कमाइए, ये हो वह पूर्व लिखिया था धूड़ तिना दी पाइए, मत थोड़ी सेव गवाइए, मत थोड़ी सेव गवाइए।

पुनीत कहते पवित्र सतगुरु रया पर पूरे बिनवंत नानक गुरु चरण लागे वाजे अनवद तूरे। श्लोक पवन गुरु पाणी पिता माता त्रत महत दिवस रात दुए दाई दाया खिल सगल जगत।

जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याय। फ्रे अंगद गुर ते अमरदास रामदास हुए सहाय। अर्जुन हर गोबिंद नौ सिमरौ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई है जिस जिथे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिया कर नौ नि दयावे ताए सब थाई हुए सहाय। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह दसवें पातशाह जी सब थाई हुए सहाय। दसा पातशाहियां दी जोत धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दार दा ध्यान तरके बोलना जी। पंजा प्यारियां चौहा साहिबजादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन नाम जपिया वंड के छकिया। देग चलाई तेग वाही देख के अमडिठ कीता तिना प्यारियां सचारियां दी कमाई दा ध्यान तरके बोलना जी। जिन्ना सिंह सिंघनिया ने धर्म हे सीख दिते बांध बांध कटवाए खोपरियां लुहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े तनारियां नाल चरवाए। गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया। सिखी सिदक केसा सुवासा संग निभाया तिना समूह शहीदां दी कमाई दा ध्यान तरके बोलना जी। पन्ना तख्ता सरबत गुरुद्वारियां जी का ध्यान तरके बोलना जी। प्रिथमै सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चेतावै। चेतावन का सदका सर्ब सुख होए जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रछिया रियायत। तेग तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत। श्री साहिब जी सहाय खालसा जी के बोल बाले बोलना जी। सिखा नु सिखी दान केस दान रह दान विवेक दान विसाह दान प्रसाद दान दाना सिर दान नाम दान। श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इशनान। चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार होवे बोलना जी। सिखां दा मान नीवां मत उच्ची मत पादे राखे आप अकाल पुरख वाहिगुरु। अपने पंथ दे सदा सहाई दतार जीओ श्री ननकाणा साहिब। समूह गुरधामां दे खुले दर्शन दीदार सेवा संभाल दा दान प्यारे खालसा जी नूं बख्शो। हे निमाणियां दे मान नितानियां दे तान नेओटियां दी उड़ने आसरियां दे आसरा धन धन। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी ओ आप जी दे हजूर उदास बेनती है जी। आप जीआं ने कृपा रहमत कीती है अमृत वेले तों सोहणे तख्तां ते प्रकाश मन हो के दर्शन दीदार बख्शे हन। आप जिया दा कोटान कोट धनवाद शुकराना है। अमृत वेले तो आप दी पावन हजूरी विच सुखमनी साहिब जी दे पाठ पंज बाणियां दे नेतनेम आसा जी दी वार दे कीर्तन होए उपरंत आप जिया वालों बख्श मुख वाग दी कथा विचार गुरमत विचारा छेव पौड़ियां आनंद साहिब दा जाप होया है। कृपा करनी जी समुचियां सेवावां निभाउंदियां होया पुल चुग दी खिमा बख्शना पढ़ी सुनी बाणी कथा कीर्तन दा भाव आईया संगता दे हिरदे ते वसाउणा सब दियां दर हाजरियां तिरफुल भेटावां प्रवान करनिया। धर्म करो नाम दान चढ़दी कला दी दात बख्शनी। परिवारां विच सुख शांति कारोबारां विच वादे करने सच्चे पातशाह जेलां विच बंद गुरसिखां दी रिहाई। चढ़दी कला करनी अपने प्यारे खालसा पंथ दी चढ़दी कला करनी आप जीआं दे भाणे विच रैण सुखां नाल बतीत होई है। अदनाब दे भाणे विच बाणी पढ़दिआं सिमरन करदिआं बतीत होवे। बख्शिआं खजानिआं विचों कड़ा प्रसादी देग सज के हाजिर है। करी पाक साल सोज पवित्रा हुन लाभ भोग हर राय। आप जी दा सीत प्रसाद जो छके नाम वाहिगुरु वाहिगुरु जपे। श्री मुख वाग दी बख्श करे सही प्यारे मेल जिन्हां मिलिआं दा नाम चितावे। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे। वाहिगुरु जी का खालसा
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।

सर्व मनूर्त राज सुख रस सद खुशियां कर तन जपना जिसका कर्म लिखिया तुर करत नानक जन के पूरन काम। सर्व मनोरथ राज सुख रस सद खुशियां कर तन जपना

0: मिथ्या तन तन कुटुंब सुभाया
1: मिथ्या हमे ममता माया
0: मिथ्या राजोन तन माल
1: मिथ्या काम क्रोध विकराल
0: मिथ्या रथ अस्ति असव।